मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन चंद ही लम्हे बाद अब हम आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से

0: प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
2: हम development, security, technology, culture और education हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, the Jammu and Kashmir

0: हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है, हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन, और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। तो आइए कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और सजाते हैं इस महफिल को मुस्कान और जानकारी के मधुर गीतों के रंग से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली,
1: और मैं हूँ रश्मि कुकरेती। सोनाली तुम्हें और इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और एफएम गोल्ड दिल्ली के चैनल के सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार।
0: होठों में बात हम दबा कर नहीं आए, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल, है ना रश्मि जी?
1: जी बिल्कुल, और बड़ा मजेदार सवाल है आज का।
0: बिल्कुल, तो हमारा सवाल आपके साथ यही है कि रसोई में हर

0: किसी ने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया है जिसमें उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है उससे, है ना। तो आपकी रसोई से जुड़ी पहली ऐसी कौन सी गलती है या ऐसी कौन सी गलती है जो आपको लगातार परेशान करती रही है?
1: तो भाई कोई ऐसी मजेदार गलती लिखकर हमें भेज दीजिए हमारी ईमेल पर, और हमारी ईमेल है
0: smgoldga@gmail.com।
1: तो जल्दी भेजिए अपना जवाब।

0: सेंट्रल थीफ से आप सुन रही थी लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और दोस्तों, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती, उन्हें हर पीढ़ी पढ़ती है और हर बार उनमें अपने समय की सच्चाई ढूंढ लेती है। हिंदी साहित्य में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम ऐसी रचनाकारों में लिया जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।
1: बिल्कुल, और उनकी लिखी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है सोनाली, उसने कहा था, वो कहानी तो हिंदी की पहली आधुनिक कहानी उसको कहा जा सकता है। और मैं बताऊं सोनाली, वो केवल प्रेम कहानी नहीं है, वो तो वचन, कर्तव्य और त्याग की ऐसी कथा है जो सच में पाठकों का मन आज भी छू लेती है।
0: सच बात कह रही हैं आप रश्मि जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें, आज यानी 7 जुलाई 1883 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। और ना इन्होंने ना संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली और इतिहास के बहुत गहरी अध्ययन इन्होंने किया था और बहुत कम लिखा, लेकिन जो लिखा वो अमर हो गया है।
1: बिल्कुल, और उनका मानना था कि शब्द तभी सार्थक हैं जब उनमें

0: जीवन की सच्चाई झलकती हो। और शायद यही कारण है कि इतना समय बीत गया, एक सदी से भी अधिक बीत गया, लेकिन उनके बाद उनकी रचनाएं उतनी ही ताजा महसूस होती हैं। साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि मनुष्य और समाज को समझने का एक सशक्त माध्यम बनाया।
1: बिल्कुल सही रश्मि जी, और आज ना जब तेजी से समय बदल रहा है, तो ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ पर गुलेरी जी का जो साहित्य है ना, वो हमें याद दिलाता है कि संवेदनाएं कभी पुरानी नहीं होती, है ना। अच्छी रचनाएं समय के साथ आगे चलती रहती हैं। तो बस आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म उसने कहा था, इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और रश्मि जी, आपको पता है हमारा जो सवाल था ना कि रसोई की सबसे मजेदार गलती आपकी क्या थी, तो बड़े प्यारे प्यारे और बहुत मजेदार से रिस्पॉन्स हमें मिले हैं।
1: तो पहली मेल कौन सी है?
0: सबसे पहले तो देखिए, नवीन भाटिया जी है मोतीनगर से, लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब चावल बनाने थे तो उसमें नमक की जगह चीनी डाल दी थी और ना उसके उसमें फिर वो मीठे चावल बन गए और सबने उसे खाया,
1: यानी एक नया बिल्कुल डिश तैयार हो गया है।
0: हाँ, और मतलब नवीन जी कितना अच्छा होता है, उसमें थोड़ी सी दूध डाल देते हैं।
1: हाँ, और एक और मेल मेरे पास आ गई है, आप हैं अलमास औरंगाबाद महाराष्ट्र से, वो अपना अनुभव बता रही हैं कि चाय गैस पर रखकर फूल गई और वो जल गई। भाई हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, शुरुआत में तो गड़बड़ हो ही जाती है।
0: बिल्कुल। और देखिए इसी तरह से खुशबू जी भी हमारे साथ जुड़ी है, ये रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ है और ये हमें नमस्ते कह रही है। आपको भी हमारा नमस्कार खुशबू जी, और शुक्रिया बने रहने के लिए। फिर हमारे साथ मनीषा जुड़ी हुई है और वो भी कह रही है।

0: गिने गाने अच्छे लगे और शुरुआत उन्हें अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों का, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपका साथ ही तो हमारी।
1: और सोनारी एक गलती मैं अपनी बताऊं जो मैंने की थी।
0: जरूर जरूर।
1: जब मैंने पहली बार आटा गूंधा तो मैंने सच बताऊं इतना पानी डाल दिया कि वो मतलब बनाने लायक ही नहीं रहा, और फिर आटा डालना और पानी डालना वो सिलसिला जारी रहा और बिल्कुल अजीब सा ही हो गया।
0: चार रोटी की जगह 40 रोटी का आटा हो गया होगा।
1: ऐसी गलतियां की है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होता है, पहला कदम में तो गलतियां माफ भी की जा सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है मेरी गलती क्या थी?
1: जी,
0: भिंडी की सब्जी बनाने गई थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया।
1: वाह। तो हमें यकीन है आपने भी ऐसी कुछ मजेदार गलतियां जरूर की होंगी जब आपका सफर शुरू हुआ होगा मजेदार रसोई का। तो लिख भेजिए अपना जवाब, हमारा ईमेल एड्रेस है ऐसे

0: तो चलिए रश्मि जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमने अक्सर गौर किया है कि घर में बहस ज्यादातर किसी बड़ी बात पर नहीं होती। और क्या होता है कि जब रिश्तों की बात चलती है तो हम अक्सर उन रिश्तों के बारे में बात करते हैं जिनके साथ हमारा जीवन जुड़ा होता है। और इसी तरह एक रिश्ता होता है जीवन साथी का, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल। कभी आपने गौर किया है सोनाली कि जो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये मन में जगह बना लेती हैं। और कब साथ चलने वाले दो लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से आगे निकलने लगते हैं, पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल सही बात है। और ना अक्सर ये हम देखते हैं कि हम लोग हिसाब किताब रखने लग जाते हैं, जबकि जीवन साथी का रिश्ता हिसाब रखने का नहीं है, बल्कि ये तो साथ निभाने का रिश्ता है, है ना? हर दिन बराबर नहीं होता, कभी एक मजबूत होता है तो कभी दूसरा मजबूत होता है। तो अक्सर हमने देखा है रश्मि जी कि कभी कोई थक जाए तो उसको बस और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आपके प्यार भरे साथ की, आपके कंधे की, है ना?
1: बिल्कुल, यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। क्योंकि भाई सोनाली, जिंदगी कोई प्रतियोगिता थोड़ी है जहाँ हर दिन जीतना जरूरी हो। और घर भी कोई ऐसा मैदान नहीं है कि हमें अपनी बात भाई मनवा के ही दम लेना है। घर तो वो जगह है जहाँ दो लोग मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों को ढकते हैं,
0: क्या बात है,
1: एक दूसरे की खुशियों को बढ़ाते हैं।
0: सच में। और देखिए यही तो बात है कि जीवन साथी वही होता है जो हमारी हर बात से जरूरी नहीं है कि सहमत हो, है ना? बल्कि वो तो ऐसा रिश्ता है जो असहमति के बावजूद उस रिश्ते में मिठास बनाए रखता है।
1: मैं तो कहूंगी यही तो नमक है जिंदगी का।
0: सच बात है
1: ना? तो भाई रसोई की बात हो रही है, मैं देख रही हूँ सोनाली कभी तुम मीठे को लेकर आ रही हो तो कभी मैं नमक डाल रही हूँ, है ना, रिश्तों में भी। तो आज जरा अपने रिश्ते को भी एक मुस्कान दीजिए। हो सकता है किसी एक छोटी सी मैं की जगह अगर आप हम पर आ जाएं तो बहुत सारी सी अनकही दूरियां अपने आप मिट जाएंगी, है ना?
0: और आपको पता है बातों में हमारी नमक और मिठास क्यों आ रही है? सवाल भी तो उसी से जुड़ा है, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: तो हम अपने दोस्तों की बातें शुमार करेंगे, पहले ये गाना सुनते हैं।

0: देखिए बाहों में फूल खिल रहे थे, फिल्म थी चुपके चुपके और स्वर थे लता मंगेशकर के साथ मुकेश के
1: जी। और जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब जो है लगातार आता चला जा रहा है, बहुत सारे जवाब हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो ये कामायनी लक्ष्मी नगर से कह रही है, भाई दूध उबल गया है और ये गलती आज तक होती रहती है, अक्सर ही भूल जाती हूँ मैं तो दूध गैस पर रखकर। भाई मिल्क कुकर भी आता है ना कामायनी, तो आप वो ले सकती हैं और उस सिम पर अगर करेंगी तो मुझे लगता है दूध उबलेगा नहीं, है ना।
0: हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से ना मेरे पास भी मैसेज आया है, ये है श्यामली से राधा वासु, ये लिख रही है कि शादी के बाद हलवा बनाया था तो इनकी मम्मी जी ने बोला कि सूजी से दोगुनी चीनी डालना, तो उन्होंने चार गुनी डाल दी, तो अब वो हलवा तो नहीं बना, बर्फी जरूर बन गई। तो देखिए बना तो ना कुछ तो अच्छा ही बना।
1: और महेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से और वो कह रहे हैं, सोनाली जी रश्मि जी नमस्कार, अक्सर रसोई में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि चाय का कप चढ़ाकर आप भूल गए, या ऐसा ही कुछ हमारे घर में भी हुआ, भाई कुकर में दाल चढ़ाकर, जो मेरी मिसेज हैं वो पार्क में नीचे चली गई और भूल गई कि कुकर में दाल चढ़ा रखी है, जब याद आया तो घर में आकर देखा कि भाई पूरी तरह से कुकर जल चुका था और फिर बहुत बुरा लगा उनको। ये सारी गलतियां हो जाती है, भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए, कुकर के मामले में सावधान रहना चाहिए, रसोई में वैसे तो सावधानी से ही काम करना चाहिए क्योंकि हम आग पर खेल रहे होते हैं ना।
0: बिल्कुल आग से खेल रहे होते हैं,
1: हालांकि महिलाएं तो आग से खेल सकती हैं, उनको आता है,
0: हम जाबाजों को इसका ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ये तो मजाक की बात है लेकिन बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, बच्चे भी होते हैं ध्यान से काम करना चाहिए।
0: अच्छा देखिए हम बहुत रोचक रोचक सी बातें लेकर के अपने दोस्तों की यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, तो कुछ ना एक रोचक जानकारी मेरे पास भी है, थोड़ी सी अलग हटके है, है ना। और देखिए किताबों की लाइब्रेरी हमने हर जगह देखी है ना, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लाइब्रेरी की बताने वाली हूँ, जानकारी देने वाली रश्मि जी और अपने दोस्तों के साथ, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। और इसमें रुद्रप्रयाग का जो जिला है उसका एक छोटा सा गांव है मणिकूह गांव, ये अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ एक अनोखी पहचान की वजह से भी आजकल चर्चा में है।
1: भाई क्या है वो खूबसूरत बात
0: आपको बताऊं, ये ना हिमालय का पहला लाइब्रेरी विलेज है, और ना यहाँ एक नहीं बल्कि गांव के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने के लिए कई पुस्तक मंदिर बनाए गए हैं। कितना सुंदर शब्द है ना पुस्तक मंदिर, है ना, जहाँ बच्चे युवा महिलाएं और बुजुर्ग अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं।
1: भाई वाह, ये तो जगह ऐसे लग रही है कि बहुत ही खूबसूरत जगह रही है, जहाँ पे भी पहाड़ों का साथ है और पहाड़ों के साथ साथ पुस्तकों का साथ है। इस गाँव की केंद्रीय लाइब्रेरी में 20,000 से अधिक किताबें हैं, इनमें साहित्य विज्ञान इतिहास बच्चों की किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें और कई भाषाओं का समृद्ध संग्रह भी शामिल है। और सबसे अच्छी बात ये है सोनाली, यहाँ किताबें पढ़ने के लिए किसी तरह का शुल्क भी नहीं लिया जाता।
0: क्या बात है, देखिए बहुत सुंदर बात है ये। और आपको पता है ना रश्मि जी कि आजकल जब हम मोबाइल की जो स्क्रीन है वो हमारा ज्यादातर समय ले लेती है,
1: बिल्कुल सही।
0: ऐसे में जो मणिगुह गांव है ना, ये याद दिलाता है कि किताबों के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी हमारी सोच को नई दिशा दे सकता है ना।
1: बिल्कुल।
0: और
1: कहते हैं ना कि सोनाली जिस घर में किताबें होती हैं वहाँ विचार कभी बूढ़े नहीं होते। वाह, और शायद यही बात अब मणिगुह गांव की पहचान भी बन चुकी है।

0: प्रोफेसर फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।
1: और भाई अब एक गलती ऐसी आ चुकी है जो बता रहे हैं उग्रसेन यादव जी दिल्ली से, वो उन्होंने हमें मेल किया है भाई, वो कह रहे हैं चाय के बारे में, जब चाय पी रहे थे तब ये गलती हो गई। हाँ। और कहते हैं कि चाय पीने के लिए सोचा तो मैडम मेरी बिजी थी, तो मुझे लगा बना लेते हैं, सब पत्ती अदरक सब कुछ डाल दिया, लेकिन चीनी के बजाय क्या डाला उन्होंने पता है, नमक। तो फिर उसके बाद मैडम जी ने कहा भाई थोड़ा इंतजार कर लेते, तो ये हो जाती है भाई गलतियाँ। और कौन सी मजेदार गलती है सोनाली तुम्हारे पास?
0: अच्छा मेरे पास ना देखिए, हमारे नियमित श्रोता है सुदर्शन मुखी जी और अनिता मुखी सिमरन मुखी है शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि गैस पर दूध रख कर भूल जाना और फिर दूध का गिर जाना ये एक आम भूल हो जाती है, और जिससे कभी कोई भूल नहीं है हुई इसका ये अर्थ हुआ कि उसने ना कभी कोई काम ही नहीं किया। ये भी सही बात है। अच्छा इन्होंने ना एक और चीज लिखी है कि भूल हमेशा काम करने वालों से ही होती है, तो बहुत सही बात है ना?
1: जी, जो काम कर भाई गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, है ना, वो सिर्फ क्या गिरे जो के घुटनों के बल चले। भाई गलती तो होती है लेकिन हम गलती से सीखते हैं आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हम भी आगे बढ़ते हैं अगली मेल की तरफ। ये मेल हमें आई है चौधरी वासी राजू अग्रवाल केशव, और ये कह रहे हैं कि आजकल मशीनी जमाना है, बिजली के उपकरण वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और अपनी गाड़ी मोटर का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप कहाँ खो गए हैं साहब, हम तो मांग रहे हैं आपसे गलती आपकी की, भाई क्या गलती की थी आपने।
0: अच्छा और देखिए कितना कभी कभी अच्छा लगता है ना रश्मि जी, कि हम कुछ करने जाते हैं और वो किसी के लिए बहुत प्यार की बात और बहुत पसंद की चीज हो जाती है। ये हुआ है हमारे लिए डी राजेश्वर राव जी के साथ में, इन्होंने ना रिक्वेस्ट की थी चुपके चुपके फिल्म का उन्हें गाना सुनना है
1: जी,
0: और देखिए संयोगवश हमने वही गाना बजाया था, है ना?
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: वो खुश भी
1: हो। तुम्हारे रिमार्क की मैं दाद देती हूँ सोनाली। पर मैं नहीं दे रही, जो दाद दे रहे हैं वो कह रहे हैं गौरीशंकर नागलोई से दाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रश्मि सोनाली

0: बेटियों को मैं राम राम और कहता हूँ आपके दिमाग की दाद देता हूँ। छोटे छोटे घरेलू सवाल पूछकर सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, यानी कि तबीयत खुश हो जाती है। इसीलिए आपका कार्यक्रम सुनने के लिए इंतजार करते हैं। हम चाह रहे हैं साहब कि आप अपनी गलती बताते कि आपने कौन सी मजेदार गलती की थी रसोई में, और उसके बाद आगे बन जाके बहुत अच्छे
1: उसका एक बहुत अच्छा हमारे सामने
0: रसोई बन गया
1: है ना, रसोई बन गए थे। तो अब हम अपने कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं, है ना।
0: और भाई चाय की बात हुई थी तो भाई ग्रीन टी भी तो कोई चीज होती है, और ग्रीन टी से हम ग्रीन ड्राइव की ओर जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: चलते हैं।
0: हाँ, हाँ। तो लेके चलो।
1: बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि घर हो या शहर, दोनों तभी खूबसूरत लगते हैं जब हमें उनमें हरियाली दिखती है ना। एक पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर भविष्य भी जोड़ जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने ना एक नई डिजिटल पहल शुरू की है।
0: और सोनाली, हम सब तो दिल्ली में रहते हैं ना, और पर्यावरण की दिशा में अपना छोटा सा योगदान अगर हम देना चाहते हैं तो ये पहले से भी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये ग्रीन ड्राइव पोर्टल शुरू किया है जिससे कि कोई भी नागरिक घर पर बैठे पौधारोपण कार्यक्रम से जुड़ सकता है।
1: कितनी अनोखी और अनूठी पहल है ना। और ना सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इस पोर्टल पर आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पौधारोपण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो अगर आपके घर पर, स्कूल में, कार्यालय या जो आपका रेसिडेंट वेलफेयर, जो आपका डेवलपमेंट एसोसिएशन है वहाँ पर, या हाउसिंग सोसाइटी में भी पौधे लगाने की जगह है, तो आप वृक्ष रथ इसके माध्यम से दिल्ली सरकार निःशुल्क पौधे आपके परिसर तक पहुँचाएगी।
0: वृक्ष रथ, वाह क्या बात है।
1: हाँ, और इसके अलावा ना एक और चीज है, वह नर्सरी लोकेटर। इसकी मदद से ना आप अपनी सबसे नजदीकी सरकारी नर्सरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से आप मुफ्त में पौधे भी ले सकते हैं।
0: भाई मैं तो जरूर मुफ्त पौधे, जो ये निःशुल्क पौधे हैं, जरूर लूंगी और अपनी सोसाइटी में लगाऊंगी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उनकी जो पहल है एक पेड़ माँ के नाम, मैं ये जरूर करूंगी। जो तुमने मुझे बताया ना नर्सरी लोकेटर है, ये जरूर मैं नर्सरी ढूंढूंगी और लगाऊंगी, क्योंकि इस अभियान को जो जन भागीदारी का रूप देने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है सोनाली। और इसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं है बल्कि हर नागरिक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना भी है।
1: बिल्कुल। और ना एक चीज और बता दूं, हाँ, कि अगर आप भी, मतलब हमारे दोस्त भी, हमारे श्रोता भी जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो एक इसकी वेबसाइट है जो है greendrive.delhi
0: वायु,
1: हाँ, वन महोत्सव, जी जी जी, तो वहाँ पर दिल्ली वन महोत्सव है, तो ये पूरा greendrive.delhi1mahotsav.in इस पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
0: क्योंकि भाई जुलाई का महीना चल रहा है, वन महोत्सव का समय है, पौधे लगाने का समय है, तो greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाकर पूरी जानकारी हम ले सकते हैं। बस चलते चलते एक बात कहना चाहती हूँ सोनाली, एक पौधा लगाइए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खूबसूरत बात पता क्या है, उसमें बढ़ता हुआ देखना।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: क्योंकि पौधे सिर्फ लगाए नहीं जाते, अपने पन से पाले जाते हैं।
1: देखिए, ये तो एक सिलसिला है, और इस सिलसिला को बढ़ाते जाइए।

0: फिल्म सिलसिला में आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: और एक सिलसिला यहाँ चल रहा है, लगातार हमें मेल्स मिल रही हैं। उमेश कुमार हयाला से कह रहे हैं, नमस्ते, जब मैंने पहली बार रसोई में सब्जी बनाई तो नमक डालना ही भूल गया। हाँ भाई, कोई चाय में नमक डाल रहा है, कोई नमक डालना भूल गया, और बहुत सारी गलतियां भी हो रही है। और भाई ये सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है मयूर विहार से, वो कह रही है रोटी को गोल बनाने चली थी लेकिन वो बन गई पूरे नक्शे जैसी बन गई, और उसके बाद घर वालों ने पता है क्या नाम दिया उस रोटी को, मैप रोटी।
0: कितना क्यूट नाम है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो, और ना आपने जिस तरह से बोला ना मैप रोटी, मुझे अपना एक किस्सा याद आया। मेरे पतिदेव ने भी कोशिश की थी
1: अच्छा
0: रोटी बनाने की। हाँ। वो रोटी बहुत अच्छी अब बना लेते हैं। हाँ। लेकिन जब उन्होंने सबसे पहले बनाई थी ना तो खुद कह रहे थे कि मुझे नहीं पता मैं कौन से देश का नक्शा बनाया था, पर उन्होंने बनाया था। जी जी।
1: और नमक से जुड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं। एक बार एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो कह रही हैं कि पहली बार जब खाना बनाया, सब्जी बनाई तो नमक डालना भूल गई, जैसे उमेश जी भूल गए थे, लेकिन भाई घर वालों ने सबने बड़े प्यार से बिना कुछ कहे खाना खाया, और बाद में बोले उसके उनके हस्बैंड कि क्या आज डाइट वाला खाना बनाया था।
0: जी
1: बिल्कुल।
0: लेकिन रिस्पॉन्स बहुत प्यारा था ये वाला।
1: जी बिल्कुल।
0: और अगले ने अपनी गलती भी समझ ली।
1: हाँ।
0: और कुछ खराब भी नहीं बोला गया।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप हैं रमा, ये हमारे साथ जुड़ी हैं रोहतक से, कह रही हैं कि एक बार घर में हम दोनों की लड़ाई हो गई पति पत्नी की, और तब मैं सब्जी बना रही थी और मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझसे सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा पड़ गई, और उसके बाद तो ये हुआ कि जिसने भी वो सब्जी खाई उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा देखिए भाई खाना कितना इमोशनल है। जी बिल्कुल।
0: इमोशनल खाना,
1: इमोशनल, क्योंकि हम जुड़े रहते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं तो जुड़ती है ना, श्रोताओं के साथ भी जुड़ी हुई है, और जो खाना बनाता है उसकी भावनाएं तो भाई घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ जुड़ी रहती है ना। उनके लिए तो वो पलके जो है ना बिछाते हैं, बिल्कुल है ना,
0: पलक पावड़े बिछाते हैं और खूब तरह से प्यार अपना शो करते हैं
1: ना। तो पलकों की झालर जो बुनते हैं।

0: फिल्म हर जाए में हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: और सोनाली भाई, हम आते हैं जाते हैं कहीं भी, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे, वो सुरक्षित रहें आते जाते। तो ये जो जिम्मेदारी है ये केवल कानून या पुलिस की नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे उसकी खुद की और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। क्या कहती हो तुम?
0: बिल्कुल सही आपने बात कही जी। हाँ। क्योंकि देखिए बच्चों को बचपन से, विशेषकर लड़कियों को, है ना, इसके बारे में जरूर सिखाना चाहिए। और सुरक्षित समाज की शुरुआत घर से होती है,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ बेटियों के साथ साथ बेटों को भी सम्मान, संवेदनशीलता और सम्मान का, समानता के संस्कार दिए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और सोनाली, सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा से नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण भी है जहाँ डर, हर महिला बिना डर के अपनी बात कह सके, पढ़ सके, काम कर सके, यात्रा कर सके,
0: बिल्कुल सही,
1: और अपने सपनों को पूरा कर सके।
0: बिल्कुल। और इसी कहते हैं कि जहाँ पर एक जिम्मेदार नागरिक होगा तो समाज भी उतना ही जिम्मेदार बनेगा, और तभी हमें उचित सहायता और कानून का साथ देना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल। भाई अगर किसी महिला के साथ आप अन्याय होता देखें या दुर्व्यवहार होता देखें तो आप चुप ना रहें, है ना, और कानून का साथ दें, और छोटी सी जागरूकता, समय पर की गई मदद और आपका संवेदनशील व्यवहार किसी का जीवन बदल सकता है। तो हम क्या कहूंगी चलते चलते?
0: बस यही कहूंगी कि महिला सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सके, इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। और महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी परिवार मजबूत होगा, समाज आगे बढ़ेगा
1: और देश सशक्त होगा।

0: अभी कहाँ जा रहे हो, हमें
1: और हमारे साथ राजेश जी कह रहे हैं कि भाई एक बार मैंने खिचड़ी बनाई और वो बिल्कुल ख़राब हो गई, तो मैं अच्छे से तैयारी करके नहीं गया, ऐसा वो कह रहे हैं, गलती
2: है। देखिए आपने गौरी शंकर जी से कहा था ना कि अपनी कुछ गलती बताइए, है ना, तो हमें मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि उनसे चाय बनाते हुए करीब 20 साल हो गए हैं, शुरू में तो खराब बनी थी, बाद में आदत पड़ गई और अब उनकी घरवाली कहती है चाय आप ही बनाया करो, क्योंकि उनके जैसे अच्छी चाय कोई और नहीं बनाता।
1: और महावीर कॉलोनी सोनीपत से संजय कुमार जी कह रहे हैं कि सब्जी बनाते हुए सब्जी में नमक तेज हो गया और मैंने सब्जी में फिर चीनी मिलाई ताकि बैलेंस। भाई वाह, ये तो कुछ गुजराती मतलब डिश बन गई है ना, व्यंजन बन गया है ना, तो हम कहेंगे अकेले अकेले मत जाइए, थोड़ा सा पत्नी से पूछ कर काम कीजिए, अच्छा रहेगा।
2: और इसी के साथ ना हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि बहुत बार ये होता है कि हम सब हंसी मजाक में बातें तो करते रहते हैं, लेकिन हमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो होता है कि हमारी जिंदगी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना वो मोबाइल फोन में सिमट गया है। बैंक खाते से लेकर के UPI हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया, तस्वीरें और हमारे तमाम जरूरी दस्तावेज सब हमारे मोबाइल में हमारे हाथ में रहते हैं, है ना
1: जी, बिल्कुल। और हालांकि पासवर्ड तो लगाते हैं, लेकिन सवाल केवल पासवर्ड का नहीं है बल्कि डिजिटल जिम्मेदारी का भी है। आज कई लोग अपनी जरूरी जानकारी किसी भरोसेमंद परिजन के साथ साझा करने, महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित रखने और जहां तक संभव हो डिजिटल नॉमिनी या लीगेसी जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं। भाई देखो, इतने कठिन समय में परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता।
2: बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पासवर्ड सबको बताते जाए, है ना, बल्कि जरूरी ये है कि समय रहते अपनी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की योजना बना ली जाए, है ना।
1: बिल्कुल, आखिर हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहेज कर रखते हैं, तो अपनी डिजिटल विरासत को भी थोड़ा व्यवस्थित करके रखिए भाई, और हो सकता है ये छोटी सी तैयारी किसी मुश्किल समय में आपके अपनों के बहुत काम आ जाए, सुना ली, है ना।

0: देखिए जाना तो हमारी बनता ही है, जिम्मेदारी भी बन जाती है,
1: क्योंकि समय कह रहा है कि समय हो चुका है, कल फिर आने के लिए,
0: बिल्कुल कल फिर आने के लिए। तो बस इस कार्यक्रम यानी घर आंगन से मुझे सोनाली
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

हर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का

0: प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today. The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high-quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event at the Istana Merdeka. Lok Sabha Speaker Om Birla and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar have congratulated Prime Minister Modi on being conferred Indonesia's Medal of Honor. President Draupadi Murmu unveiled and flagged off the trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. Addressing the gathering, the President said this year new teams will compete to become the champions of the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy, expressing happiness over the participation of the Sri Lankan team in this year's tournament. President Murmu said the inclusion of new teams would make this historic competition even more popular. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kogje and Sameer Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen in the case. On July 26, 2008, a series of 21 bomb blasts ripped through Ahmedabad in a span of 70 minutes, killing 56 people and injuring 200 others. Some hospitals in the city were also

0: targeted. A special court in 2022 sentenced 38 Indian Mujahideen members to death. The court had also sentenced 11 other convicts to life imprisonment. Mizoram's Natural History Museum has been notified as India's 21st designated repository under the Biological Diversity Act 2002. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the institution as a designated repository based on the recommendation of the National Biodiversity Authority. Designated repositories constitute an important component of India's biodiversity governance framework by preserving authenticated biological specimens. Amidst the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. Benchmark domestic equity indices were trading in positive zone during the afternoon session today. The Sensex climbed 132 points to 78,417, while the Nifty advanced 33 points to 24,463 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:10 हुए हैं। वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अन जान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही फिल्म से और आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम है। तो भाई आज इस कार्यक्रम में फिल्म भी ऐसी ही हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। तो घड़ी की सुइयों को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। साल होगा सन 1990। जी हाँ दोस्तों, जब थिएटर के बाहर लगी थी लंबी लंबी लाइनें और हर ऑटो, हर दुकान, हर रेडियो पे, हर घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन गूंज रही थी और वो गूंज थी इसी फिल्म के गीत, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। जी हाँ दोस्तों, पहचान गए होंगे ना आप बिल्कुल इस गाने को सुनकर। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के लिए चुनकर लेकर आए हैं डायरेक्टर इंद्र कुमार की उस यादगार फिल्म को जिसने रोमांस कॉमेडी ड्रामे से एक नई परिभाषा लिखी। फिल्म दिल 36 फिल्म फेयर पुरस्कारों में दिल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 8 नॉमिनेशन इस फिल्म को मिले। और यही वो फिल्म जिसके लिए माधुरी दीक्षित ने जीता अपनी लाइफ का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वो पुरस्कार जिसकी हर कोई अभिलाषा रखता है। और दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु में भी बनाया गया 1993 में थोलू मुद्दू के नाम से, और इस फिल्म को कन्नड़ में भी बनाया गया शिवरंजनी के नाम से। और ये जिस भी भाषा में ये फिल्म बनी है, हर भाषा में इस फिल्म ने कुछ कमाल ही कर दिखाया है। तो दोस्तों आज का सफर फिल्म दिल के नाम, तो करते हैं शुरुआत अनुराधा पौडवाल की प्यारी सी आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

बिल्कुल यादों में तो खो गया होगा आपका भी दिल, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी उतने ही मजेदार थे इस फिल्म के किरदार। राजा यानी कि हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और मधु यानी कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, कॉलेज की नोकझोंक, वो तकरार और फिर धीरे धीरे उस नफरत का प्यार में बदल जाना। अनुपम खेर और सईद जाफरी की वो अमीर गरीब की टक्कर और

बनने का वो अनोखा ड्रामा। क्यों आ गई ना यादें, ताजा हो गई होंगी बिल्कुल यादें। तो दोस्तों आज हम इस पूरे सफर में उन्हीं यादों को ताजा करने वाले हैं। समीर साहब के लिखे गीत, आनंद मिलन के संगीत से सजे हुए इस फिल्म के खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम लेकर आए हैं फिल्म दिल, 1990 की फिल्म दिल, जिसकी स्टार कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, खासकर आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी के बारे में, तो इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे भी बहुत से दिलचस्प किस्से हैं। डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी इस पहली फिल्म के लिए कैसी जोड़ी चाहते थे जो कि यूथ को अट्रैक्ट करे, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है वो उसको अपनी तरफ लाए उस फिल्म देखने के लिए, और जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक की जब बहुत तगड़ी सफलता मिली आमिर खान को, तो भाई रातों रात वो तो बन गए थे यूथ आइकन और चॉकलेट बॉय बन गए थे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वो लगते थे इसमें। और डायरेक्टर इंद्र कुमार एक ऐसे अभिनेता की तलाश में थे जो कि कॉलेज का शरारती लड़का भी लगे, लेकिन जहां ज़रूरत पड़े वो एक संजीदा प्रेमी का भी किरदार निभा सके, यानी कि दोनों तरह के किरदारों में फिट बैठे। और आमिर खान तो ठहरे भाई मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो वो तो उसमें डल ना उनका तो लाजमी था। और वाकई में आमिर खान की जो इमेज है और जो उनकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स हैं, उनको देख करके उन्होंने राजा के किरदार के लिए तुरंत फाइनल किया आमिर खान को। लेकिन माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में साइन करने से पहले उन्होंने बहुत सी अभिनेत्रियों के बारे में सोचा, लेकिन उस वक्त उस दौर में माधुरी दीक्षित की तेजाब, त्रिदेव जैसी जो फिल्में थीं वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, और उन फिल्मों के बाद माधुरी दीक्षित काफ़ी अच्छे स्टारडम में छाई हुई थी। यही सोच करके इंद्र कुमार ने माधुरी दीक्षित जी को अप्रोच किया, और क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसी एक्ट्रेस आमिर खान के अपोजिट में हो जो कि उनको अच्छे से टक्कर दे सके, जो नखरे भी दिखा सके, नटखट भी हो, और इमोशनल सीन अगर वो करे तो देखने वाले को रोने पर मजबूर कर दे। और भाई माधुरी दीक्षित तो इन सब चीज़ों में महारत हासिल है। माधुरी दीक्षित और आमिर खान की फ्रेश जोड़ी जो पहली बार नजर आई सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म दिल में, और ये जो फिल्म में इनकी जोड़ी आई है वो वाकई में एकदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म दिल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर हमने किरदारों की बात की इस फिल्म में, जो किरदार थे उनके बारे में अगर हम बात करें, तो हजारी प्रसाद को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की जान आमिर खान के कंजूस और लालची पिता का किरदार निभाया इस फिल्म की, आप एक तरह से कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी था ये किरदार, और ये किरदार निभाया अनुपम खेर ने। हजारी प्रसाद बने आमिर खान के पिता, और इस रोल के लिए इंद्र कुमार चाहते थे कि एक ऐसा कलाकार हो, एक ऐसा मंझा हुआ कलाकार हो जो विलन भी दिखे, लालची भी दिखे, और अपनी हरकतों से वो लोगों को हंसाए भी, यानी कि उन्हें चाहिए था एक कॉमिक विलन। और अनुपम खेर जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो भाई वो तो एकदम फैन हो गए इस स्क्रिप्ट के। और अनुपम खेर जो कि अपनी वर्सटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने तो बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि भाई इस किरदार को वो एक अलग अनोखे अंदाज में निभाना चाहेंगे, लाउड तरीके से उसको बनाएंगे। और देखो जो किरदार उन्होंने निभाया, वाकई में वो किरदार आगे चलकर बन गया एक आइकॉनिक किरदार। यानी कि अगर हम बात करें इस फिल्म की और हजारी प्रसाद के बारे में, अगर बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर हम इस फिल्म के दूसरे किरदार की बात करें, वो दूसरा किरदार जिसे निभाया सईद जाफरी साहब ने, दिग्विजय सिंह का किरदार, जो कि माधुरी दीक्षित के पिता का किरदार उन्होंने निभाया, जो कि बहुत अमीर है लेकिन घमंडी है। और सईद जाफरी की जो पर्सनैलिटी है वो एकदम अमीर घमंडी जैसी लगती है और उनके ऊपर सूट करती है, और उस पर उनकी कड़क आवाज़, आलीशान सूट पहने हुए वो रौबदार तरीके से उन्होंने अपने इस किरदार को निभाया और उस किरदार में जान फूंक डाली। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी फिल्म में अनुपम खेर और सईद जाफरी के बीच में जो भी टकराव हुए या समधी बनने वाले जो सीन्स रहे हैं, वो जो ड्रामा रहे हैं, वो एकदम से नेक्स्ट लेवल रहे, एकदम अलग टाइप के रहे। और वाकई में जब भी वो लोग स्क्रीन पर आते थे ना, गुस्सा भी आता था लेकिन हंसी भी ज़रूर आती थी। और शायद यही वजह थी कि इंद्र कुमार ने इस फिल्म में जिस तरीके से किरदारों का चयन किया वो वाकई में काबिले तारीफ था। और जिस तरह से उन्होंने आमिर और माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए चयन किया, जिस तरह से अनुपम खेर को चुना, सईद जाफरी को चुना, वाकई में, और यही वजह थी कि इन सभी ने थिएटर में आग लगा दी। और शायद यही वजह थी कि सन 1990 की सबसे ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी दिल।

जी दोस्तों, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। स्वन सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर गुरलाल, अभिराज हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, साइना हसन हमारे साथ जुड़े हैं नाजिया इब्राहिम के साथ, नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दादा बाहू रोड गिरडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन, अंजान, साइमा हसन, नवाज, बाबू अहद मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील पाठक, कमल, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार, जगराव, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री सुधाकर, राजे जादव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीरगांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं अजित भावसर, प्रमिला भावसर जी, और लिखते हैं कि मैंने फिल्म बहुत बार देखी और इस फिल्म का जो गीत संगीत है वो भी हमें बहुत पसंद है। जी हाँ अजय जी, इस फिल्म का जो संगीत है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। पोटिया कला दुख से संजय कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजित भावसर जी ने बहुत ही खूबसूरत जो जानकारी वो हम तक पहुँची आई है। लिखते हैं कि जो डांस नंबर है दम दम आदम, उसमें काम करने के लिए शुरुआत में आमिर खान ने मना कर दिया था। आमिर का मानना था कि माधुरी दीक्षित जो है वो उस समय की बेहतरीन डांसर थी, उनके सामने डांस करना कमज़ोर दिखना था जो कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में इंद्र कुमार ने उनको राज़ी किया। तो अभी हम आपको वो गीत भी सुनवाएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी ये खूबसूरत जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सुतार, मनोज, हिमांशु सुतार हमारे साथ जुड़े हैं, नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल छीपा पूजा परिहर के साथ, और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई है। ज्योति मक्कर, मन्नत भरत, कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो अगला संदेश इसको भेजने वाले हैं अपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी और उनका पूरा परिवार, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगले संदेश के साथ जुड़े हैं हमारे साथ इशाक मोहम्मद जी, चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से, खतीजा बेगम के साथ संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सैद अबासी, निगत परवीन, सियानवाज, सरफराज, फरीन, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू के साथ, और ये अगला संदेश भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा जी, ग्राम ममना से, इंद्रानगर भवरपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला संदेश है सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का, अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उषा मोहन टिल्लू नायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल विलर्स डिकेस्ट्रो जुड़े हुए हैं, जनकपुरी सहारनपुर से, समदिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, राधे दीपक जी जुड़े हुए हैं, और कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, बसना भवरपुर से राजू देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं, और दोस्तों अगला संदेश जो हमारे पास है इसको भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद जी, संदेशों की जो घड़ी है वो बहुत सारी है, लेकिन अब जो घड़ी की सुइयां वो इशारा करें कि मुझे आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन याद रखिए ये जो गीतों का, फिल्मों का सफर, ये जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा। 2:30 पर एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगी आप सभी की प्यारी दोस्त अंजू पांडे। तो दोस्तों रेडियो यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਸ਼ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਡੂਰੰਟ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2026 ਦੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 17ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਟਵੰਟੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਨੋਟਿੰਗਹਮ ਚ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुबियांतो के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिनतांग अधिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरैन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। जनूब मगरबी मानसून शिमाली बहरे अरब, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात इंग्लैंड के शहर नोटिंगम में तीसरे T20 बैन अलावी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को नई रफ्तार देने के लिए वफ्द की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समंदरी शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक तआवुन और सनअती इश्तराक को वसअत देने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकतदारी आगे बढ़ रही है जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल हैं। मुस्तकबिल में दोतरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकतदारी में एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमियाब जमीनी मकनातीस में नई शराकतदारी का आगाज कर रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की UPI जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निजाम से मजबूत हो जाएगी जिससे तिजारत और सफर में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकर्ता में सदर प्रबोवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 साल से भी ज्यादा कदीम परमबनन मंदिर के तहफुजाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। उन्होंने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफती विरासत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम की हजर

0: exchanged in several areas, including critical minerals, technology, agriculture, and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।

0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रकृति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर

0: क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
1: 6300 हेक्टर हरित रीच दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी रोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन

0: आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और

0: सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 2:30:14 और ये वक्त है उस प्रोग्राम का जिसका आपको हर रोज इंतजार रहता है, प्रोग्राम एक ही कलाकार। तो पहले सुनते हैं ये संदेश, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करते हैं।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट चंजू पांडे, और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं हिंदी फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम दौर में, जहां धुनें सिर्फ

मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने,

0: हीरामण शेंडे, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाणे।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
1: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
1: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
1: जी,
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिमलेश जी से।
1: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी बिमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
1: जी
0: बिमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
1: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
1: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
1: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
1: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
1: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं। इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 880

0: 1-800-450-5559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहा, श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
7: आओ चलो।

0: मौका दे। तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो, नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: पार्डन अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, क्या कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए।

0: जाने लगे। लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा वो देखिए, एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
1: पापा आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ चलो, आओ खादे आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ है?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?

0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
3: अभी तक आप एक स्पॉन्सर प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे, NCERT मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं। समीन दोपहर के 3 बजे जाते हैं आप, हम आकाशवाणी दिल्ली से प्रोग्राम उर्दू सर्विस रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए।

अदावर्स, ये आकाशवाणी है। सपहर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामईन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नज़र डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब से चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वफद की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समुद्री सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मफाहमत नामे किए गए। वज़ीर आज़म को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा ने दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। और फुटबॉल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकत दारी को नई रफ्तार देने के लिए वफद की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकत दारी 2018 में कायम हुई थी और अब यह एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समुद्री शोबे में ताउन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक ताउन और सनती इश्तराक को उसत देने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकतदारी आगे बढ़ रही है, जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल हैं। मुस्तकबिल में दो तरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकतदारी में आज एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमियाब जमीनी मकनातीस में नई शराकतदारी का आगाज कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निजाम से मरबूत हो जाएगी, जिससे तिजारत और सफर में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकर्ता में सदर प्रबोवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 से भी ज्यादा कदीम परम्बानंद मंदिर के तहफुजाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। उन्होंने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफती विरासत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की सदसाला तकरीबात जोश खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम की हजर देवंतर के ताउन को याद किया और कहा

उनका तालीमी फलसफा गुरुदेव टैगोर की नजरियात से गहरे तौर पर मुतासिर था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मेर्डेका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने किया। ये एजाज भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकतदारी को मुस्तहकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वजीर आजम के ताउन के एतराफ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरी इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकतदारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके चार खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफुज और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा चार खलीज मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क्यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाकयात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस साल ड्यूरेंट कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी। सदर जमहूरिया ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलोंग के अलावा इस साल ड्यूरेंट कप के मैच रांची में भी खेले जाएंगे। भारत केरलम के शहर कोची में कल से शुरू होने वाले ब्रिक्स के खवातीन वजारती मीटिंग की मेजबानी करेगा। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के वजरा आपसी ताउन को मजबूत करेंगे और मुल्क के ब्रिक्स ग्रुप की सदारत के तहत खवातीन की क्यादत वाली तरक्की के लिए एक मुश्तरक विजन को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा जिसमें 38 मुजरमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस AY कोगचे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 38 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लरज कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी। अदालत ने 11 मुजरमीन को सजाए उम्र कैद भी सुनाई थी। जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने इतला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। इनमें से 3,989 यात्री बालतल के रास्ते से जबकि 4,826

0: यात्री पहलगाम से यात्रा के लिए रवाना हुए। वस्ती चीन के हुई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफानी बारिश हुई और तेज हवाएं चली, जिसके सबब वांगगांग में 257 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 400 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रोबोबो सुबियांतो के साथ वफद की सतह की बातचीत की। अहम मदनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समुद्री सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा गया। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दो तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में खराज अकीदत उस अजीम अदाकार को जिसे हम शहनशाह जज्बात के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपके हमारे सबके चहेते दिलीप साहब यानी मोहम्मद यूसुफ खान, आज उनकी बरसी है और चंद नगमे उन्हीं की फिल्मों के। ये पहला नगमा उनकी बहुत ही मकबूल और मशहूर फिल्म मुगले आजम से। इसमें उनकी अदाकारी के जलवे हम सब ने बखूबी देखे और उनको सराहा भी।

एक और कामयाब और खूबसूरत फिल्म राम और श्याम, जिसमें दिलीप साहब के मद्देमुकाबिल थी वहीदा रहमान और मुमताज, उसी फिल्म का एक नगमा।

ये था मेरे पसंद प्रोग्राम का आखिरी नगमा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लाफानी तेरे नगमे, लाफानी तेरी कहानी। मारूफ मौसिकार अनिल बिस्वास के फ़न और शख्सियत के हवाले से ये फीचर सुनिए। तहरीर जनाब शरद दत्त की।

ये कथा फैज साहब ने जिस अनिल के लिए कहा है वो कोई और नहीं बल्कि लाफानी मौसीकार अनिल बिश्वास है। वही अनिल बिश्वास जिनकी धुनों का सामईन के दिलो दिमाग पर छाया जादू आज 60-70 बरस बाद भी उतरने का नाम नहीं ले रहा।

0: एक लिमिटेड उसका नाम है, पूरा नाम, और हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। वहां से और दो बहुत बड़े कलाकार बाहर निकले हैं, स्वर्गीय कुंदनलाल साहगल और श्री एस डी बर्मन। हम लोग सब इकट्ठे काम करते थे वहां पे। ऐसे में एक दिन वहां पे हिरेन बोस नाम का एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर आया। उस वक्त मैं किसी को वहां पे गाना सिखा रहा था, तो पूछने लगे ये गाना किसका है। मैंने कहा मेरा है। लिखा किसने है? मैंने कहा वो भी मैंने लिखा है। ट्यून कैसे किया? मैंने ट्यून किया है। गाएगा कौन कौन? मैंने कहा मैं गाऊंगा और ये लड़की गाएगी, ये है डुएट है। और वो पहला रिकॉर्ड था जिसके साथ में थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा, फॉर द फर्स्ट टाइम सुरोद वायलिन पियानो और ऑर्गन, ये चार चीज, और दूसरे तरफ बांसुरी। ये पन्नालाल घोष जी उस वक्त पहली मरतबा उसने बांसुरी बजाए थे उस रिकॉर्ड के लिए। तो सुन के आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि बेटे बम्बई चलोगे? तो मैं कुछ सोचने से पहले कि बम्बई क्या है, बम्बई जाऊंगा कि नहीं, मुंबई जाना चाहिए कि नहीं, हमारे मेरी नौकरी है यहाँ पे, काम कर रहा हूँ वहाँ का, कहने से पहले मैं कह दिया जरूर चलूंगा आप ले चलेंगे तो। और यू उन्होंने अपना मुझे असिस्टेंट बना के हिरेन बोस साहब 1934 दिसंबर में मुझे लेके बम्बई चले आए।
1: अनिल विश्वास बम्बई पहुंचे तो सबसे पहले नौकरी मिली ईस्टर्न आर्ट फिल्म कंपनी में। पगार तय हुई 250 रुपए महीना। यहां उन दिनों एक फिल्म बन रही थी, भारत की बेटी। इसके एक गाने की धुन अनिल विश्वास ने बनाई। गाना था तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये गाना इतना मशहूर हुआ कि हर खासवाम की जबान पर चढ़ गया और अनिल विश्वास की एक पहचान बन गया। मगर एक तन्हा म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से पर्दे पर उनका नाम आया धर्म की देवी में। इसके बाद अनिल विश्वास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यके बाद दीगरे कंपनी की 8 फिल्मों में म्यूजिक दिया, तो इंडस्ट्री में उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं रह गया। नतीजतन उन्हें उस वक्त की एक बड़ी फिल्म कंपनी सागर मूवी टोन से बुलावा आ गया। पगार 250 से बढ़कर एकदम 550। बहरहाल जब ये वहां पहुंचे, कंपनी की एक एम्बिशियस फिल्म बन रही थी मनमोहन। अनिल विश्वास को इसके एक ही गाने की धुन बनाने का मौका मिला, मगर ये गाना तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान की मानिंद मकबूल हुआ। गाने के बोल हैं, तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया।

आया। सागर की अगली फिल्म जागीरदार का मुकम्मल म्यूजिक अनिल विश्वास को सौंपा गया। दरअसल ये पहली फिल्म थी जिसने उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर शोहरत दिलवाई। इस फिल्म के दौरान उनकी दोस्ती महबूब से हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े डायरेक्टर के तौर पर सामने आए। अनिल और महबूब की इस दोस्ती ने कुछ बेहद यादगार फिल्में नाजरीन को दी। इनमें एक फिल्म थी औरत, जिसकी बुनियाद में पर्ल एस बक का नोबेल इनाम याफ्ता नॉवेल द गुड अर्थ की कहानी थी। आमतौर पर इसके सभी गाने मकबूल हुए, मगर अनिल विश्वास की अपनी आवाज में एक गाना खास है।

0: कठिन पड़े है नगरिया हो जाए ना फिर बराती काठ करताती।
1: औरत के बाद आई एक मकबूल तरीन फिल्म रोटी।
2: बीच में महबूब हो गया था बीमार, उसको एक नर्सिंग होम में लेके गया था, मगर हम लोग क्या करते थे अपना अपना खाने का डब्बा उठा के लेके जाते थे, महबूब के साथ में बैठ के खाना खाएंगे। वो बेचारा सोया हुआ है, उसको एक सूखा हुआ सा वो टोस्ट मिलता था और थोड़ा सा वो सूप मिलता था। हम लोग खाना खा रहे थे और वो हमें बैठ बैठ के बोलता था, खाओ भैयो खाओ, तुम्हारी तकदीर है सर, जिस रोटी के लिए हम तसब कर रहे हैं हमको देखो क्या मिल रहा है, सूखा हुआ टोस्ट और ये। एकदम से मैंने कहा कि महबूब तेरे दिमाग पे कोई इसके ऊपर कोई बात आती नहीं है। कहते क्या बात, मैंने कहा रोटी। कहते क्या रोटी क्या, मैं कहा रोटी पे पिक्चर बन सकती है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिसके लिए हम लोग सब मर रहे हैं उस पर एक पिक्चर बना तू, हमारी रोटी पे कैसी पिक्चर बनेगी, कौन सी कैसी पिक्चर बनेगी। तो मेरा तो कम्युनिस्ट का बैकग्राउंड था, तो मैं तो अपना वो सोशलिज्म पे आ गया, उसको समझाया।

का एक खाका बना के लिया। फिर अपना वजाहत मिर्जा और देसाई साहब, ये लोग सब थे उसका जो हमारा स्टोरी डिपार्टमेंट का, कहते उनको उनके उनके सामने हम रखेंगे। तो हम 4-5 पेज के उसका एक खाका बना के लेके आया, लोगों को पसंद आया था और वो रोटी पिक्चर बनी।

0: इस फिल्म के बाद महबूब और अनिल की दोस्ती में दरार आ गई।
1: ये चार दिन की रफाकत भी कम नहीं है दोस्त, ये चार दिन की रफाकत भी कम नहीं है दोस्त, उम्र भर कौन भला साथ दिया करता है। कहने का मतलब ये कि रोटी के साथ में मेरा नाता सिर्फ नेशनल स्टूडियो से नहीं, मैं उससे भी ख़त्म हो गया। वो ऐसे कि उस वक्त टाटा के जो लोग थे वो लोग फिनांस कर रहे थे और उन लोग को वो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे तो कुछ इस बिजनेस का कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ दो और दो चार नहीं होते, समझे। तो कहने लगे कि बस बंद करो इसे। महबूब में वो कॉन्फिडेंस था, मुझ में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही गया था, सब लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और फिर मैंने ये सोच के महबूब से कहा, ये मैं साफ करना चाहता हूँ इस बात को, ये सोच के महबूब से कहा था कि महबूब मुझे एक नौकरी मिल रही है, जब तक तू पिक्चर शुरू नहीं करे तब तक मुझे यहाँ पे एक दो पिक्चर बनाने दे, उसमें क्या होगा सबके घर में चूल्हा जलेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, आई वॉज मैरिड मैन एट दैट टाइम, तो मुझे डर लग गया कि मैं फिर अपने अपने घर को क्या खिलाऊंगा। तो महबूब मिनट भर के लिए चुप हो गया और फिर हंस दिया, हंसते हंस के कहा कि ठीक है तू जाकर काम कर ले। मैंने कहा तू जिस दिन बुलाएगा और शॉट के अगर गाने के रिकॉर्डिंग के बीच में अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं गाना छोड़ के चलाऊंगा, ये मैं तुझे वचन देता हूँ। कहते कोई बात नहीं तू चला जा।
0: सन 1942 में अनिल बिश्वास बॉम्बे टाकीज आ गए। ये कंपनी उस वक्त बसंत फिल्म की तैयारी कर रही थी। अनिल बिश्वास ने इसके नगमों को दिल अफरोज धुनों में ढाला। पेश है एक नगमा।

0: हजरे ना जा
1: ला हजरे ना जा ना लागो
2: बॉम्बे टाकीज की अगली फिल्म थी सन 1943 में बनी किस्मत, जिसकी मौसीकी अनिल बिश्वास ने तैयार की। इसका एक नगमा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये कैसा अजब इत्तेफाक है कि जुलाई सन 1914 में अनिल की पैदाइश हुई तो उसके साथ ही पहली जंग अजीम का आगाज हुआ। जब उन्होंने किस्मत फिल्म का ये इनकलाबी नगमा मौसीकी में ढाला तो दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी। पेश खिदमत है रगों में लहू की रफ्तार तेज कर देने वाला हुब्बुल वतनी से लबरेज ये नगमा।
0: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर।

इन दो फिल्मों के बाद अनिल बिस्वास ने बॉम्बे टाकीज की चार और फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिनके नाम है हमारी बात, आंख में चोली, ज्वार भाटा और मिलन। इनमें ज्वार भाटा इसलिए काबिल जिक्र है कि दिलीप कुमार ने अपना फिल्मी सफर इसी से शुरू किया था। इसका एक दिल को छू लेने वाला नगमा है सांझ की बेला पंछी अकेला।

बॉम्बे टाकीज छोड़ने के बाद अनिल विश्वास फिर नौकरी के बंधन में नहीं बंधे। जब तक बंबई में रहे उन्होंने फ्रीलांसिंग की। इस दौर की पहली फिल्म है पहली नजर, जिसमें उन्होंने मुकेश को ब्रेक दिया और एक ही फिल्म से मुकेश बतौर प्लेबैक सिंगर इंडस्ट्री पर छा गए।

अनोखा प्यार फिल्म का अनिल विश्वास के करियर में एक अलग मुकाम है, क्योंकि यही वो फिल्म है जिसमें उन्होंने मीना कपूर को पहली बार बतौर प्लेबैक सिंगर पेश किया और आगे चलकर वो उनकी जिंदगी में ही दाखिल हो गई। इस लिहाज से फिल्म का ये गाना बेहद मौजू है।

इस फिल्म का लता और मुकेश की आवाज में एक सदाबहार दो गाना है, जीवन सपना टूट गया। सामाइन को बता दें कि अनिल बिश्वास ने ये गाना किसी और फिल्म के लिए सहगल और नूरजहां को जहन में रख के तैयार किया था, लेकिन किन्हीं वजूहात की वजह से ये फिल्म नहीं बन सकी, तो इस बेमिसाल कंपोजिशन का इस्तेमाल बिलाखिर अनोखा प्यार में हुआ।

अनिल विश्वास ने जैसे पहली नजर में मुकेश को और अनोखा प्यार में मीना कपूर को ब्रेक दिया, उसी तरह आरजू में तलत महमूद को ब्रेक दिया और उनसे ये गाना गवाया।

अनिल बिस्वास के म्यूजिक डायरेक्शन में तराना फिर एक तारीखी फिल्म है। तलत की आवाज में इसका कभी ना भुलाया जाने वाला ये नगमा सुनते हैं।

0: फ्रीलांसिंग शुरू करने के बाद अनिल विश्वास ने बहुत फिल्में की, मगर यके बाद दीगरे नए लोगों के साथ काम करते करते उनके दिल में वो पुरानी ख्वाहिश फिर से जागने लगी कि कोई महबूब जैसा हमनवा मिले जिसके साथ बैठकर दोस्ती और समझदारी का मजा लिया जा सके, और उन्हें अब्बास मिल गए।
1: पिक्चर तो मैं बहुत करता रहा उसके बाद में,

चली, कुछ नहीं चली, कुछ बनी कुछ नहीं बनी, मगर ऐसे लोगों के साथ काम करते करते करते मेरे मन में वो पुरानी ख्वाहिश फिर जागने लगी कि कोई मेरा ऐसा हम नवा मिले जैसे महबूब था, जिसके साथ बैठ के वो मज़ा मिले दोस्ती का और समझदारी का। ऐसे में मुझे अब्बास मिला और फिर अब्बास के साथ काम करते हुए मुझे इतना मज़ा आया। उसके साथ में मैंने 3 बहुत कामयाब पिक्चरें बनाई, एक राही, एक परदेसी, एक 4 दिल 4 राहें।

अनिल विश्वास ने वैरायटी प्रोडक्शंस के नाम से अपनी फिल्म कंपनी कायम की, जिसके बैनर तले 5 फिल्में बनाई गईं। इनमें एक फिल्म हमदर्द है, जिसे उनके बेमिसाल संगीत के लिए आज 60 साल बाद भी याद किया जाता है। इसके एक गाने में उन्होंने मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजें लेकर 12 मासे का खूबसूरत इस्तेमाल किया था।

बंगाली फिल्म नौका डूबी के म्यूजिक डायरेक्टर भी अनिल विश्वास थे, जिसका पूरा म्यूजिक रविंद्र संगीत की बुनियाद पर तैयार किया गया। मगर हिंदी में भी उन्होंने वारिस फिल्म के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना रविंद्र संगीत की बुनियाद पे कंपोज किया था।

मोतीलाल हिंदी सिनेमा के एक बड़े अदाकार तो थे ही, अनिल विश्वास के जिगरी दोस्त भी थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन पर प्रोड्यूसर बनने की धुन सवार थी और उन्होंने राजवंशी प्रोडक्शंस के बैनर से छोटी छोटी बातें बनाई, तो जाहिर है कि उसमें म्यूजिक अनिल विश्वास का ही होना था। पेशे खिदमत है मीना कपूर के दिलकश आवाज में इस फिल्म का एक यादगार नगमा।

छोटी छोटी बातें के बाद अनिल विश्वास फिल्मी दुनिया को और बंबई को अलविदा कहकर दिल्ली आ गए। सन 1963 की 1 मार्च को बतौर ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। इस ओहदे पर काम करते हुए उन्होंने तकरीबन 60 लाफानी कंपोजिशन तैयार की, जिनमें से बेशतर आज भी ऑल इंडिया रेडियो के खजाने में महफूज हैं।

लाफानी तेरे नगमे लाफानी तेरी कहानी, मारूफ़ मौसिकार अनिल बिस्वास के फ़न और शख्सियत के हवाले से ये फ़ीचर अभी आपने सुना। तहरीर जनाब शरद दत्त की थी, तरतीब व पेशकश AM रज़ा की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD विदेश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। आगाज नए दौर फिल्म के नगमे से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ।

0: आज कल शौक दीदार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है।
1: लीडर फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, शकील बदायूनी का लिखा हुआ, मौसीकी नौशाद की।

मधुमति फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और लीजिए सुनिए बाबुल फिल्म का दो गाना, तलत महमूद और शमशाद बेगम का गाया हुआ।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश दीदार फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। नगमा निगार शकील बदायूनी और तर्ज बनाई है नौशाद ने।

और ये जब सुनिए गंगा जमुना फिल्म का नगमा लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया हुआ। नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी नौशाद की।

0: रमन
1: चोरी छुले गजब किया चोरी चोरी दिया में बस गई
2: बस गई
1: बस गई
2: धीरे धीरे

0: प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बैराग फिल्म से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी कल्याण जी आनंद।
1: अरे सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या सच है

0: इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फरहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वज़ीर आज़म को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिंतांग अदिपूर्णा से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरान कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। और जनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकत दारी को नई रफ्तार देने के लिए वफ्द की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमतनामों का तबादला भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकत दारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी अतमाद से दिफा, सलामती और समंदरी शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है

मालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निपटने से मुतालिक तआवुन और सनअती इश्तराक को वसअत देने से इत्तफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकत दारी आगे बढ़ रही है, जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निज़ाम से मरबूत हो जाएगी, जिससे तिजारत और सफर में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्याकार्ता में सदर प्रबोवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 से भी ज्यादा कदीम प्रम्बनन मंदिर के तहफुजाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मेर्देका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने पेश किया। यह एजाज भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकतदारी को मुस्तहकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वजीर आजम के तआवुन के एतराफ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरी इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकतदारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। भारत केरलम के शहर कोची में कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स की खवातीन वजारती मीटिंग की मेजबानी करेगा। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने बताया है कि इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के वजरा आपसी तआवुन को मजबूत करेंगे और मुल्क की ब्रिक्स ग्रुप की सदारत के तहत खवातीन की क्यादत वाली तरक्की के लिए एक मुश्तरक विजन को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस एवाई कोगजे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 70 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लरत कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने इत्तला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। इनमें से 3,989 यात्री बालतल के रास्ते से जबकि 4,826 यात्री पहलगाम से यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रियों की महफूज और आसान आमदोरफ्त के लिए 363 गाड़ियों की बंदोबस्त किया गया है। वस्ती चीन के हुबेई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफानी बारिश हुई और तेज हवाएं चलीं जिसके सबब हुआंगांग में 275 अफराद जख्मी हो गए जबकि 400 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। बचाव और राहत कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बहरान के दौरान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का वक्त देते हुए कहा है कि अगर उनकी शराइत को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को बड़ा और आखिरी रद्द अमल किया जाएगा। एक बाजाबता बयान में कमेटी ने ऐलान किया है कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक के उसके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरान कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस साल डूरान कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें

0: एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई नई टीमों के शामिल होने से इस तारीख मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी। सदर जमहूरिया ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलोंग के अलावा इस साल डूरान कप के मैच रांची में भी खेले जाएंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने बताया है कि शुमाल मगरबी मानसून के शुमाली बहिरे अरब, गुजरात के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में अगले 3 दिन के अंदर मजीद आगे बढ़ने के हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि साहिल कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज शदीद बारिश होगी। आज दिन में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिश्रित राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमालयाई के ज़ेरी इलाके, मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी। उधर कौमी खत्ते राजधानी में आज दोपहर हल्की बारिश हुई, जिससे उमस भरे मौसम से लोगों को राहत मिली। मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बैन अल-अक़वामी मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ वक्त की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरान कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की और जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से समाप्त फरमा रहे थे। मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं। सामईन, अब से लेकर रात 10 बजे तक अब आप हमारी नशरियात मौजूदा मीटर के अलावा मीडियम में 1584 किलोहर्ट्ज, 199.4 मीटर और न्यूज ऑन AIR एप्स पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मीडियम में टू ग्यनंग नेशिबिनाजवी किलोहर्ट्स, मीडियम में सोचिक नाग ग्यनंग नेशिबिनाजवी किलोहर्ट्स, दोना न्यूज ऑन AIR एप सिकांग अचस आकाशवाणी करगिल नाजरिन चिगिन दिरिंगी जकपो अंगारू जुलाई इससे सिलसिले इंग्लिश उर्दून Esvili miston nisho sajdu kuaxpo fitoge tu sotaga sonsu kasata ngachi diringi programi guzuk pekar sakhma Qurani tilawad na tarjuma fruchuget ngyan mazat Qari Shakir Qasimina Mehrajuddin kana
3: Bismillahirrahmanirrahim Shuru Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehmwala

0: त्यो उहाँ मैले स्टेज बनाएको छैन, लेकिन
1: कसरी?
0: नहुले अगर युगमा ऊ 1999 छैन त्यो स्टेज बनाएन ढुङ्गाले,
1: कसरी?
0: अगर 160 ने या 160 हेडो या 160 मङ्पु छैन, या युगमा ऊ 100 हेडो या 100 मङ्पु छैनले त्यसले त्यो उहाँ स्टेज टू हाइपरटेन्सन जसले सोमस यो एज पर डेफिनेसन भयो जेएनसी गाइडलाइन हिसाबै डेफिनेसन पो यो ढुङ्गाले कि ब्लड प्रेसर भयो गुमा ब्लड प्रेसर भयो चेक हो जानेले एटलिस्ट 5 मिनट पेसेन्ट रेस्ट हो त्यस थिङ ने अगर ब्लड प्रेसर नेन जानेले फर्स्ट ब्लड प्रेसर भयो गए रिडिङ भयो मिथे चेसले त्यसजना त्यहाँ यु छले चिचि पेसेन्ट जिगु वात गए डाक्टर गए उनको गल लाचा चि परेशान छ सन मध्यले टेन्सन छ सन वात को चीज जे डाक्टर चि मेजर जते सोमस त यो जस्ता ब्लड प्रेसर चि गिन लचा दियाले सोमस त यो फेंगे फर्स्ट रिडिङ भयो अगर गता माने ना डिस्कार्ड छ ना त मते फिल दे मोले तेस थिङ ने गता यंग ब्लड प्रेसर भयो रिपीट छ चेसले लम्पो निस टोटल म लम्पो सुन जु सन गले पहिला उखरम भयो फर्स्ट भयो डिस्कार्ड छ तेस थिने सेकेन्ड थर्ड ब्लड रिडिङ भयो ब्लड प्रेसर रिडिङ बिल्कुल बिल्कुल सेकेन्ड चोज लगभग यन्तु पुगता यहाँ 2 मिनट सम्मेट अगर यहाँ न ब्लड प्रेसर मापे गुनाले नतोक न जारे न फितोक छंकाले नतोक सुम
1: गेला खर्जी जचाओ मसलन ओबेसिटी सेंट्रल ओबेसिटी यानी डॉक्टर मोस्ट मोटा छचाओ तनी सिल मापो जाना मार मापो जाना ब्राज मापो जाना सुस्पा ना हेल्दी डाइट पुची होशिन
0: हेल्दी डाइट न छम सा इंपोर्टेंट नोले चिचिक तंगा ताई छे कंजम्पशन बोले
1: कसले
0: मता मे आम तोर मता सोसाइटी न चुक्सी पहिले मता नमकीन चाओले
1: कसले
0: म मापे म्यूने कंज्यूम चोर गेले लास्ट टाइम लद्दाख से कुछ स्टडीज में तो ये देखा गया 10 ग्राम 12 ग्राम से ऊपर छा ले लेते हैं ले तो जम छा कंज्यूम चुना बॉडी फैटिक मान ले छा एक तो ब्लड प्रेशर तो खतरा ही ना गया मगर छा पर कार्सिनोजन आए तो एक कैंसर काजिंग एजेंट जान गए तो फिर छा मांगो मेन
1: चलता जैसे की मित्रियों
2: Dakhsan sakpayan tes deluxe hago ngyan chutpin. Miri me wikadio akashwani kargilin waxpo tusso gana manar sum chuso gason su kasata purgi ergan lurik pro chukayet ngyan mazat.

दास्तान साहब इंतज सर की अनलोरिक ने चुतपिंग मीडी में विकादियो आकाशवाणी करगिल वक्स पो फितोग तो सुटुक छिंदुक सतमा चास आकाशवाणी दिल्ली ना हिंदी ना अंग्रेजी खबर रिलेबित रिलेला डाउ बाजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिमतांग अदिपुणा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि ये परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि

0: 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के ठथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said, history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
1: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, Prime Minister Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector.
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। 2 करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: The two leaders agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Prime Minister Modi expressed gratitude for the award and dedicated it to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: इन केरल

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रंगी बिजनेस उल्लास के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब पिल्ले पीस कप्स मांगमो दरने यंतिस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिन गिन से होत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
6: 8700014242। सुनो ना।
5: हाँ।
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ,
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
6: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: Parsis dona genio tinsu. De anu na ngatang Ladakh Ladakh ka tonga tel ta na ngatang zyada tar ngatang Muslim na Buddhist yo tinsu. De Muslim pona Buddhist pola Government of India's kuch program ka ton ngatang launch pas yo tinsu jisme bahut sare schemes yo tinsu. Ode ka na ngatang kafi fayda len man cha tuk de filadi program ponga ta awareness fila ngates chosi.
1: Maksi ju mem chanani yere selpo basi mol sang chanangati programar galuk jakan ka kapono achi numunla di program poshtu ton po chinzu zere de skor la chi xal po basimulna
0: di program me main objective sunin chuk sabse pehla na ga minority shiga ngata low feel mi cha chupi phila ya ngata alag chi feel mi cha chupi phila ngata minority sunla education po enhance basyo tin chu enhance na ngata education pe ka focus base ngata sak na danda yambo education po shul be phila ngata education po enhance be phila ngata program khachi gyo tin chu jese ki chik chik ya deang na chik chik ngata ICDS program jisku ngata lata kha mainly कॉमन लेंगे आंगनवाड़ी सेंटर से दे आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ जैसे कि आते फ्रूस आगे इन्ना या लेक्टेटिंग मदर्स आगे इन्ना या प्रेग्नेंट वुमेन का तुन इन्ना या उदोन सगामा आते एजुकेशन की तरफ खेर भी कोशिश बाचिंसु उदे अनु आता आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ 0 to 6 साल थक पे आते शिवा चिंसु जब ना उदोन लंग आते फुट इन्ना या आते एजुकेशन इन्ना उसको थेपजार्स चोशिक और यजान चिक तांसे या बुलिक सब से कौन एजुकेशन इटवर्ड्स आता इंटरेस्ट जगह इवा चिंसु
1: नुकाती प्रोग्राम चोगे नुना यंग गचुक आता मिमा सुनिस फनखेलेन मी यंग अर्गेला प्रोग्राम ची आची हो तिंसु
0: यंग दिया नुना आता लद्दाख का तुन ता आता उर्दू सामग्री टीचर ता दिया हिंदी सामग्री टीचर ता दी सामग्री चारुनंग फैसिलिटेट बखनपुदी 15 न्यू पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम ही वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज सी प्रोग्राम है उन्होंने योचिन पार्टी चिक Dianuna Kongas modernization of madrasa education chiyongchin su dianuna chiba chin su zana ngata dini talim po lenen chigis dini talim pyanu ngata subject khaji introduce base jese ki science zere math zere classroom ne le fese ya libraries fese udi madrasa una ngata di dini talim po na a talim po niska collaborate be koshish ba chin su di program pe di program meaning position su modernization of madrasa education yang chichi yong chinsu di program pen scholarship program chi jo ngat mainly di program ina ngate phu sagas almost student sagas faida len ne or har school pe introduce hua bhi hai dio jaise ki pre matric scholarships erna ya post matric scholarships erna PhD ba khan saga molana azad scholarship national scholarship ong chin dun saga ma di program under ong chin agar ka tong atang di program I pare awareness yo dia pate ka tong yo nang atang di program ing atang faida thik basir len ma yan chin
1: marchi ju ma mere salpo bas mo sang chanani dana chola di scheme po khrang nam gozuk somin chuk des kor la chi salpo bas mo
0: na this scheme pong atang launch somin chuk 1983 ang ati female prime minister indira gandhi's launch bas pinchu देर गे अपना दी मिंग पो रिनेम सोसिंसु यंग मिंग ची तक्स पिंसु 15 पॉइंट प्रोग्राम 2006 यंग सोसिंसु दोंग आती प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इस बस पिंसु देर गे अपना यंग आता अमेंडमेंट सोसिंसु लागू हो रंग आता 2009 यंग सोसिंसु दी प्रोग्राम में
1: छन जुदा न तोला आता बीपीएल जरिया नी बिलो पॉवर्टी लाइन नियानु अंडर यंग खानी मिमा सुनि फेरे गतु फन के चनी स्कीम स्ट्रिक दी पीएम 15 पॉइंट minorities welfare nuk shamil basiduk
0: dia nung atanga bpl zare below poverty line la zare fayda man mangu duk jese ki scheme jese ki self employment wage employ for the poor zar khan chi duk dia nung atanga chi an chin su zarna bpl sanga ma daily wages zare jaga ba bakhane de mazuri thop chin su jese ki ngata scheme dia nung mangu duk jese ki sgsy into swaran jayanti gram स्वागर योजना जरखंची यंग दुख रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरण जानती योजना रोजगार योजना दुख उदिन सगामे कनंग आतांगा फायदा लेन मा यांचा दुख की बीपीएल लोत खानुन लांग आतांग दक्षन माजुरी माथोबना या दुचो कतुन माछांग आते दी सिकी मुन यांग अप्लाई बसे खोंगा डेली वेजेस जना जागा माजुरी उंग आतांग थोप से खो दी प्रोग्राम उन्हें कनंग आतांग फायदा लेन मा यांचिंसु
1: Chana dana tozla yang gamyu lianu Mrs. Khanut khani kakafono achino moni feres gatuk kimzrik duk angaan ki housing na dunatude.
0: Dianu ngata ngasi kimchi chiyondu.

خونے سے کھا سد سرعت نمینا حضرت عیسیٰ خونے سے کھا سد سرعت.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: Sagit Panifia program yan in Jodping program Prochukan Penming Kanis Fatima Miri Mivika Diu Akashwani Kargilin.

0: करगी और खिचूर के बीच शंगशी नदी इस दरिया में आकर जम होती है।
1: देखना युलजुक दमसना थांगबू रिगलिंग रिगल बना संग्राना थुत पी जम्बे गुत दिस जम्बाओ रिगम सो सूरी का नी सिरे सी छोहो जम्बाओ दूर चख जम युत संग्रार गल बना दीर गम सोए का संकुना संग्रा थुत पी चख जम को सुमिरे सी छोहो जम्बाओ दूला फरगुन संसी जम्बा जरित फरगुन संसी जम्बे योगा दीर गम सो जबुल सुब सुनियंग रिगल इंचात
2: Sangpar gyam tso suri ka zamba nyis yod. Do na sangka dir gyam tsyang grokpo nyis drispat. Tangal jong silung mea na yong khani grokpo la khandi grokpo zaret. Yon jong silung mea na yong khani grokpo la nakpuchu zaret. Di grokpo stakpa umbi ryunya na bingma.
0: Yahan se aage sangku tak donu kinarum par yoljok, damsana, thangpo, gyaling, changra vagaira abad hai. सांकू में एक नदी दाईं तरफ वाली नाले से आकर इस दरिया में मिलती है जिसे खंडी ग्रोकपो कहा जाता है और दूसरी नदी बाईं तरफ वाली नाले से आकर इस दरिया से मिलती है इसे नकपूचू कहा जाता है।
1: सांकू आदिर ग्यामसोय का जंबांग इस हुकूमत इस प्रचोसयुत चिकपो कारगिलो सक पसंग रिंगमो जम्बाविन दिजम्बे रिंगपो मीटर निपया थल थल रिगत दिजम्बास शहर संकुना थजगाम थुतियत ए जम्बा चिकपोस नरम बिना ब्राको थुतियत संकुर गलबना लंकर से खाचन फरुना दोना टंग जोंसपुला थुइना छुक्सेयत
2: फरुना जरखनी युलपोर गलबना रगमछो सुरु दोगमो मालसान यंगना बिनसे फलफल युलुन यंग लेबे Tangal Jones Pola Tambisna Kanur Sukseot, Yon Jones Pola Thaleskort Gon Dona Lunche Zerkani Chogo Falfal Yulkun Sukseot.
0: Sanku se Farona tak Daryai Suru ke Donu Kinaron par Thazgam, Braku, Lankarche, Thuina, Khachan aur Furuna Abad hai. Furuna se guzarne ke baad ye darya khuli aur hamwar bastiyon mein pahunch kar kuch zyada hi faydamand ho jata hai. इन बस्तियों का नाम दाईं तरफ टिम्बिस जहां पुराने जमाने में राजा महाराजा महल खानों में रहा करते थे टिम्बस के बाद कनूर गांव आबाद है बाईं तरफ सिल्सकूट गुंड और ट्रस्पून आबाद है
1: लोंचेर गलबना दीर्घम से छीका टंगजोंसपुला सर से

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya faili thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना,
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ایلومس بنی نوح انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام۔

मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्स, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 199.4 मीटर और न्यूज़ ऑन AIR एप पर हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब है। शब के 8 बजे हैं, पेश खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

आदाब, मैं हूं आपका मेजबान अब्बास यावर। आकाशवाणी करगिल के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज की इस पुरसुकून रात में हम अपने फौजी भाई बहादुरों को सलाम करते हैं और यादों का एक हसीन गुलदस्ता लेकर हाजिर है।

मोहब्बत और ख़ुशी के एहसास को दिल में समोए। अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा सुना। बाहर आए तो जैसे तुम आ गए हो, नफस में एक हलचल सी मचा गए हो। फिल्म सूरज में ये हसरत जयपुरी साहब की तरस और मौसीकार थे शंकर जय किशन के। आइए फिल्म आंधी से ये नगमा पेश करते हैं। सरहदों की तन्हाई में जब महबूब की याद सताए तो ये नगमा मरहम का काम करता है। सुनते हैं किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में ये नगमा। तुम्हारे आने से घर में उजाला सा हो गया, लगता है जैसे कोई ख्वाब सच हो गया।

सजाता फिल्म में अभी आपने तलत महमूद साहब की रेशमी आवाज का जादू आपने सुना। रात के इस पहर पे नगमा आपके दिल की गहराइयों को छू लिया होगा। लीजिए मिर्जा गालिब के इस नगमे को समाप्त फरमाएं। जिसे गाया है तलत महमूद जी ने और नगमा निगार है मिर्जा गालिब और मौसीकार है गुलाम मोहम्मद। दिल नादां को समझाओ किस तरह, दिल नादां को समझाऊं किस तरह, ये मानता नहीं इसका हाल क्या है।

कभी कभी दिल उदास होता है और ऐसे में किशोरदा के दर्द भरे नगमे साथ निभाते हैं। टूटा हुआ दिल जब धड़कता है, टूटा हुआ दिल जब धड़कता है, तो हर लफ्ज़ में एक दर्द झलकता है।

लीजिए सामीन, अगला नगमा फिल्म पत्थर के सनम से। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। मोहब्बत का एक और लाजवाब नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। आइए इसकी सरेली दुनिया में खो जाए। पत्थर के सनम को हमने खुदा माना, पत्थर के सनम को हमने खुदा माना, अपनी मोहब्बत को हमने सबसे बड़ा जाना।

फौजी भाइयों, जिंदगी में कभी कभी इंसान के ख्वाब बिखर जाते हैं, लेकिन हौसले कायम रहते हैं। आइए सलमा आगा की दर्द भरी आवाज में एक ऐसा नगमा सुनते हैं जो दिल की वीरानियों को लफ्जों में परोता है। दिल की बस्ती में एक कोई उजाला नहीं रहा, होंठों पर कोई तबस्सुम कोई प्याला नहीं रहा, अरमां जो देखे थे हमने किसी के साथ, अब वो ख्वाब आंखों में बस एक झाला नहीं रहा।

भोजीवा योग प्रोग्राम का आखिरी पेशकश फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी के नगमा और मौसीकार ओपी नैयर के। प्रोग्राम के आखिर में मोहम्मद रफ़ी साहब का ये पुरजोश नगमा आपके हौसलों को और बुलंद करेगा। लाखों है जहां में पर एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल के करीब और सबसे जुदा हो।

फौजी भाइयों, ये थी आज की महफिल। उम्मीद है आपको ये नगमा अच्छे लगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, मुल्क की हिफाजत में मसरूफ रहिए। आकाशवाणी करगिल से प्रोग्राम ख़त्म करने के अपना दोस्त अब्बास यावर को दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर, जय हिंद।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान, और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय

0: क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा समुद्री सुरक्षा व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया

0: एशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु आईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले

0: मृत्यु की दर में पिछले तीन वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international.

0: और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आज़ादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत तरक्की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा बहरी सलामती तजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने UPI समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीक़ेकार के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 1 अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
2: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपुर्ण से सरफराज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
2: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे।

0: और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जुजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया, जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तिसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीकेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मजबूत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
1: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा जरई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की, ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मनसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ का भी जायजा लिया, जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोदे खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मैपाजी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक

0: इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासर कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के पांचवें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉ अजय शंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉ जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना दो रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दो तरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 में 0.3 और स्मॉल कैप 100 में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंगहम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसअत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ki de fayo no me llega fayo tok tenale to ai faste asno culture tra kyu e ju be ko te yo ne jo bazon ura kare aso je tra ke ta kana function e tok asile to jok te na ju ga ma ja nya function e gi habas ga shuria lai tenale ai faste asne ka jo ga bare ge system ka jo bare ga razala to lai si bi jo asne program kon do ne kore ke jok asile asne ka jo system jok bunyar na le chi le khoi
1: बोडे जमे जो तो मुसासनी ड्रेसो बारे रद बिसासनी ड्रेस एनी जो लॉन्ग वुलन कोटे केनो बालो रे साइट और रिंग को साइट और लेसिक भी पुशुवी
0: पुशरिंगे बिल्कुल
1: पुशरिंगे सतासनी खो एनी के पे गोलेक गोले के निबा आज पुशुक भी एनो बालो रे जो सेन तमुलाय और एनी छिली
0: छिली
1: मुलाय से गबन नहीं मुलाय से गबन नहीं कोटे तो बाल से गबन
0: लेकिन
1: ना लेकिन मुलाय रे छिली एनी जू
0: शिना छिली शिना कोई थे एक
1: लाई
0: मतलब फेमस आई तो असोचे का हबास बेनी की टीवी के बोनी मुति फंक्शन के बोनी की आम तो देखो ये ट्रकिया तानी असो कल्चरो
1: कल्चर भी
0: कोई बिल अनि असली कल्चर बिल ते बेनी सु मुति कल्चर के मजा हस तो असोचे लाई हबास बॉय
1: हबास बॉय मतलब
0: पहचान बेनी
1: पहचान एक अलग पहचान के
0: बेनी,
1: जो
0: बिल्कुल जी
1: सिने बिलियो असने में ले खोयो जा साइट हो जा
0: तुम्हारे
1: रे तुम्हारे भी एने खुलो सुए छु
0: बिल्कुल
1: खुलो
0: बिल्कुल
1: सुए थे भी एने जो तो आम पशुओं ने बात टीवी जगह पशुओं ने बात प्रोग्राम जगह पशुओं ने बात असनी शून्य एड्रेस असनी शून्य बुटे नहीं पेजारे अलग किस्म को तो कहने बैजू
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: या असने कजो जा बेस ट्रकियों और अनुस्तो असने कजो जा
0: मिजू के सिस्टम
1: को तड़ा खाई जू
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल हाई मैं जसनो कल्चर जा कजो छक मैं जो हलमुला वेनो हलमुला स नला श्ले ट्रेना
0: मैं जो छिले
1: ट्रेना छिले ट्रेना जो मैं जो छिले ट्रको एनो सो से बहुत गिए नो
0: मतलब छिले तो मतलब जो बिलजू
1: छिले तो मतलब आ बिल मतलब बहुत गिए नो एक तो
0: बिल्कुल
1: बहुत गेरो के आ आधे फाला
0: अच्छा
1: तैयार
0: खबर बेया बेया या साबानो फिरिस गिनोनी
1: ओ ऐसे सामान का चा खानो से स्लेट
0: स्लेट थे जैसे
1: किस नो को रिस्पांसिबिलिटी थे बिना जो
0: बिल्कुल
1: हलाल गो रे जो
0: हलाल तरीके
1: हलाल तरीके
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सब एक असनो कल्चर आ कहीं जो मैं जो करा जे ससनोली हलाल हलमुलो हते फाए थया ना देमु और अलग सब तकर अलग जो से मामेज उठे रे खनी बा रिवाज खनी असनो कल्चर है जो से मछोन जरूरी है
0: हलाल है ते फाइन थे
1: हलाल है
0: सब
1: दक्कन
0: में
1: बिल्कुल
0: सो परे हलालु वो सब दक्कर है
1: हलमुलाव से हलाल सब दक्कर है
0: गियोनी हलाल से हलमुलाव
1: सब दक्कर है
0: बिल्कुल
1: से मां टपाल गच्छो नुश
0: से मां हुशा जो से जिम्मेदारी
1: चले तो
0: बिल्कुल
1: एक रिस्पांसिबिलिटी हलमुलाव से कहीं जो दुमो कहीं चले तो रिस्पांसिबिलिटी हलाल सामान बराबर शबो किक थे
0: कचाक पेरोया
1: अचाक
0: हिसाब पेसाला पेरे बालन
1: थाइरो बिल्कुल बिल्कुल
0: तो चले स्टोजिंग में तो लाई हिंजू या बिल्कुल
1: बिल्कुल जो तभी तो चूस थे अलॉट बे के तेज के बिना
0: हुशार
1: बंदा के भी उन आज जो
0: बिल्कुल
1: सेनी बिलियो शिले ट्रिक रिस्पॉन्स आता है मतलब असनो कल्चर है रिवाज हिंजू की हलाल इन्हीं खलिये में जो शिले चरना
0: बिल्कुल
1: शिले चरना जो तो शुकोई मुलिली फेमस गए निजु
0: बिल्कुल
1: या
0: कासिदा गिनोनी बे नोट गिनोनी बे
1: नोट गिनना गालियो गाई जाते ना गामो गाई जाते ना
0: रटोनो में खोजना
1: रटोनो में गा खोजना छलेटरे
0: बिल्कुल
1: तो छलेटर से गोना जी
0: आउ जी
1: कासिदा गोना जी सुनी बिलो असनोर फिर कल्चर जा फिर जैकि असने शिकोय मुला ऐसे रुपाए गे गिन नहीं कम से कम 2000 गे गिन नहीं
0: 3000
1: गे गिन नहीं सासनो कल्चर है मेज और थमा मेज और थे हैं जो
0: बिल्कुल आई फर्स्ट छिलेस्ट रजान जो की मोर आने के मोर कालो थो छिलेस्ट थे तो मेजु को खेना जा को तो खैर बे मी अवल रजी के ससो जा ना ना कल्चर सो जा एडॉप्ट थे तो असनो कल्चर है बे सच दी लेकिन असो के अचक बे मु तो कल्चर ने गिनो ना जितना हो सके असनो कल्चर मुठो आयो ना सोचे मेहनत थो ना जो आयो ने गाओ जो असनो कल्चर लो गाई जार नल थी जो छिलेश तो एक मेन अनि रे कसल थी लो गाई जार नल थी
1: दयानल जो बिल्कुल
0: लो गाई दियो तो इमोशनल माहौल एक बेल थी या ताकि लो लो वत तो विदाई बोनी टाइम आ लो थे रेना ले थी फरियाद थे नल थी मिजु को खेना तो रो एक इमोशनल मोमेंट एक बेलो थी वक्त टाइम एक लो थी आज एक लाई रे कसली थी जो मिजु को खेना जी अमन लो गाई थे मलाई रिवाज है लो गाई गिनो न सले या मछले से गिनल थी जो
1: असली हाई कोतेगा कोतेग हाई जो कल्चर जा टक्यो यस तो कोतेग हानी मतलब पैश ले टू तो अजे के गार नले बाबे के होक ते नले राके के होक ते नले तत श्ले चर नले गाय दय नले कसे दग गिन नले नुट ग दय नले शोक ग थे नले
0: बिल्कुल
1: ता तो मतलब